ये है हमारा हिंदुस्तान, जहां गुलामी की जंजीर काटने को तत्पर हैं आजाद हिंद फौज के जवान। स्पंदनहीन हृदय में जोश नया भरना है आज, मातृभूमि की परवरिश का कर्ज अदा करना है आज। शहीदों के लहू लुहान कदम पड़े जिन राहों पर, उन राहों पर बनकर फूल कदमों तले बिखरना है आज।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं।

0: टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
1: For your family treat this summer.
2: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
1: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
2: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
1: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
2: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights, and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday, 11th and Saturday, 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
4: Mera rang de basanti chola. Mera rang...

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं?

सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो के 103.2 FM स्टूडियो पर और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप लंदन भी सनराइज रेडियो को सुन सकेंगे 2nd of September। और अगर एप्पल ऐप स्टोर पे या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाहते हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक, मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं, तो एंजॉय कीजिएगा हिट ऑफ द आवर को।
1: द हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9। कॉल 01274 056-0101.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। तो जनाब चलते हैं अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे बहुत ही प्यारा सा गीत, बड़ी प्यारी शायरी के साथ, यकीनन आप दोस्त पसंद करेंगे। हीरा खान साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का। जनाब आपने फ़ोन किया, प्रोग्राम में शमूलियत की, आपको अल्लाह सलामत रखे। और आप हमेशा प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बड़े प्यार से और हंसते हुए बात करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रखे आपको। आपके दोस्तों के नाम गीत, स्पेशली ताज जुल्फी साहब के नाम। और तारिक भाई बीडीएच से आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया। जनाब आपके साथ इस वक्त आपके दोस्त हैं आसिफ खान साहब, तो उनके नाम भी गीत होगा जनाब आपकी तरफ से। उसके बाद खान साहब, आपने भी खान भाई फ़ोन किया, शुक्रिया हमेशा की तरह। आप बड़े खलूस से, मोहब्बत से, प्यार से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बात भी बड़े प्यार से करते हैं, नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते और बहुत कुछ कह जाते हैं एक से दो सेंटेंस में। तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप के नाम भी गीत और इसी गीत को गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे और हाजरा बहन आपके नाम भी करेंगे। गिनती के दिन रह गए हैं हाजरा बहन, अब सादिया बहन आने वाली हैं और आप दोनों गठी हो जाएंगे फिर। तो जनाब हमारी कोशिश रही कि आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत जो है प्ले करते रहें और आपको सादिया बहन की कमी महसूस ना होने दें, लेकिन वो तो होती ही है। तो चलते हैं, एनीवे बातों में लगे रहेंगे तो टाइम बहुत आगे निकल जाएगा और फिर गीतों का सिलसिला रुक जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि बातें कम करें और गीत आपको ज़्यादा सुनाएं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद जनाब प्यारा सा गीत होगा कमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में, आप सभी सुनने वालों के नाम। तो एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। तो अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। अगर कोई गीत सुनना चाहते हैं या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, आपके लिए लाइनें जनाब खुली हैं।
2: ज़ायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है। सारे

का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

जी दोस्तों, अभी आप आशा भोसले और कुमार सानू को सुन रहे थे और अब कमर्शियल का टाइम हो गया है, लेकिन जल्दी में चलेंगे आपके लिए प्यारा सा गीत पेश करेंगे ताकि ये कमर्शियल तक ये गीत ले जाए। छोटा सा गीत है, 3 मिनट और कुछ सेकंड्स का, तो चलेंगे ये गीत सुनते हैं। चौधरी मुजफ्फर साहब, फ़ोन करने का शुक्रिया, और हमें फ़ोन किया सोनिया बहन बर्मिंघम से, आपने शुक्रिया, आपका भी, आपके नाम भी करेंगे। और एक नंबर लगा हुआ है, अभी दोबारा करें तो आपकी कॉल में ले पाऊंगा, आखिरी 3 डिजिट हैं 121, आपकी 3 मिस कॉल लगी हुई है, माजे चाहते हैं कॉल नहीं आपकी ले पाए, अगर अभी आप फ़ोन करें तो हम आपकी कॉल ले पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, मेरी जन्म से तमाम सुनने वालों के नाम ये प्यारा सा गीत, अपने दौर का मकबूल तरीन गीत, आप और है छोटा सा लेकिन मज़ा आता है बड़ा सुनने में।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अभिजीत की प्यारी सी आवाज में। इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद आप छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनेंगे जिसमें आप ब्रेडफोर्ड और गिर्दोनोवा में जो कुछ फंक्शन हो रहे हैं वो आपको बताएंगे, तो वो आप सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे जो मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और ये गीत हमें जनाब ले आया उस मोड़ पे जहां हम जनाब कमर्शियल की जानिब बढ़ते हैं। तो कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा, लेकिन वो गीत किसके नाम होगा जनाब? वो होगा वाजिद भाई एडस्वी से फ़ोन किया, शुक्रिया आपका, आपके नाम करेंगे। सोनिया बहन आपके नाम करेंगे, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे, और उसके बाद खान भाई आपके नाम करेंगे, तारिक भाई बीडीएड से आपके नाम करेंगे, और हीरा खान साहब, तारिक जुल्फी साहब, और जनाब ग़ुलाम भाई और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम, और उसके बाद जनाब इसी गीत को सुनना चाहेंगी बहना हजरा जी आपके नाम, और इसी गीत को इकरा जी आप सुनना चाहेंगी नजमा इफ़त नाजिया उमीदा रुबीना बुशरा ताज़ीम जायदा साइमा के लिए और सभी सुनने वालों के लिए होगा। तो दोस्तों, कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त 11:44 हुआ चाहते हैं, और उसके बाद यानी कि 11:44, तो चलेंगे कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे एक सदाबहार गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और आप चलते हैं इस प्यारे से गीत को सुनते हैं। और नदीम मंसूर साहब शुक्रिया फोन करने का, खान भाई बहुत शुक्रिया फोन करने का, आपके नाम भी और गुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम, और मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दत्ता, उमेर, बाबर, इफराज आपके नाम भी, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।

0: जी दोस्तों साथियों ये मस जाते हैं आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे प्यारे से गीत पेश किए जाएं, बशर्तिया आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी पसंद का गीत भी कह सकते हैं, तो वो आपकी पसंद पे फिर होंगे। तो एनीवे अब चलेंगे जनाब एक प्यारी सी गज़ल जो है उसको उसके साथ शुरू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। तो जनाब वो इतनी प्यारी गज़ल है कि जब भी प्ले करें तो सभी इसको बहुत पसंद करते हैं और कौन कौन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें प्रोग्राम में शामिल होते हैं फ़ोन करते हैं वो उनमें है जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज़ मुनीर, वसीम, इमरान मुजाहिद, अल्लाह देता, उमैर बाबर, इफराज़ आप और उसके बाद ये ग़ुलाम भाई आप भी पसंद करते हैं और आपका स्टाफ भी पसंद करता है। तो मलका जी, आशा जी, जिया जी, रानी साहबा आपके नाम भी करेंगे, नवीद भाई आपके नाम भी करेंगे और इस गज़ल को इकरा जी और उनकी पूरी टीम नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताज़ीम, जायदा और साइमा जो है वो भी इसको पसंद करती हैं, उनके नाम भी करते हैं और हमारी प्यारी बहना सादिया जी जो आजकल पाकिस्तान में है उनकी फेवरेट गज़ल है और आजरा जी उनके साथ होती हैं उनको भी ये पसंद है, उनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे। स्पेशली नदीम मंसूर साहब, आपने गीत की फरमाइश की, ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी होगी, फ़िलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा और ख़ान साहब आपके नाम भी स्पेशली ये गीत होगी, गज़ल होगी। तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारी सी गजल को हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, तो एंजॉय कीजिएगा।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: बचाने वाली हैं तो फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ यादें ऐसी हैं जो दिल को चीर के रख देती हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो एनीवे यादें यादें ही होती हैं जनाब। तो चलते हैं, अब टाइम चेक कर लेते हैं जनाब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:15, यानी कि 12:15। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा जो मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा। इंजॉय कीजिएगा।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300। दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
7: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together,
11: it all adds up.
12: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: पहुंच ना सके।
1: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा इस गीत को। और चलते हैं, अब एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करते हैं, एंजॉय कीजिएगा इसको।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। अब दोस्तों वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद आप एक पंजाबी में कवाली सुनेंगे नुसरत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में, जो मैं सभी सुनने वालों के नाम करूंगा जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके नाम की ये कवाली, इस कवाली को एंजॉय कीजिएगा। और प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद कवाली, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: 24 hours a day. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274-744-62 or 077-900-35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

जी दोस्तों, अभी आपने नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। महबूब इलाही साहब, फ़ोन करने का शुक्रिया जनाब। आपके नाम वो कवाली भी की और आने वाला गीत भी करते हैं। गुलाम भाई, आपका फेवरेट गीत, आपके नाम, आपकी पूरी टीम के नाम। और नदीम मंसूर साहब, टाइम आने वाला है इस गीत के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी, आपके पसंद का गीत जरूर प्ले करूंगा। खान भाई, ये गीत आपके नाम भी और दीगर दोस्त जो सुन रहे हैं उनके नाम भी, और स्पेशली तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे तो चलते हैं। और चौधरी मुजफ्फर साहब, आपके नाम भी करेंगे तो चलते हैं। दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और हम प्यारे बंदे गुलाम भाई से बात कर रहे थे और ऊपर से गाना खत्म हो गया, बातों का सिलसिला रुक गया। तो चलिए गीतों का सिलसिला भी रोकते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:46 यानी कि 46 मिनट्स पास 12। तो चलेंगे कमर्शियल की जानेब, माजे जाते हैं कमर्शियल के बाद। जनाब नदीम मंसूर साहब ने कल भी मेरे ख्याल में गीत लगाया था मैंने, लेकिन नदीम मंसूर साहब ने इस गीत की फरमाइश की, तो हमें नदीम मंसूर साहब का कहना तो टाल ही नहीं सकते हम लोग। तो उनकी पसंद पे रफ़ी साहब का ये गाना आप सब सुनने वालों के नाम, और महबूब अल्लाही साहब, गुलाम भाई, तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी आपकी जानब से आपके दोस्तों हीरा खान और मलिक इसहाक साहब के लिए भी। और उसके बाद जनाब जितने दोस्त इस वक्त सन रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे, और स्पेशली जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब खान साहब आपके नाम भी करेंगे, और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं माज चाहते हैं बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: Sunrise Radio. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना रफ़ी साहब की आवाज़ में, और इसकी फरमाइश की थी नदीम मंसूर साहब ने। और अब जनाब इस आवर का आखिरी गीत आप दोस्तों के नाम करूँगा। थोड़ा स्लो गीत है लेकिन बहुत ही प्यारी शायरी के साथ है। उम्मीद रखूँगा कि आप सभी दोस्त इस गीत को पसंद करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। ये प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी ये प्रोग्राम का आखिरी जो आवर है इसमें भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहें तो ज़रूर आइएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं जनाब अब हिट ऑफ द आवर की जानिब। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं, तो चलते हैं सुनते हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: मच
1: जी। दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
2: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12:01। तो चलेंगे कमर्शियल की जानिब। आबिद भाई फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके लिए दो प्यारे से गीत आएंगे। फिलहाल तो जो गीत कमर्शियल के बाद होगा ये पुराना सा गीत मैंने चुना है, आपके नाम और आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम होगा। उसके बाद तारिक जुल्फी साहब, आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करेंगे।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio connects your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। अब आते हैं अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है आपिद भाई, आपकी जन्म से, आपके स्टाफ के नाम तारिज रफी साहब, महबूब अल्लाही साहब, गुलाम भाई, आपकी जन्म से, आपके स्टाफ के नाम। और इसी गीत को मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज मुनीर, वसीम इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दत्ता, मुनीर बाबर, इफराज हुमैर, आपके नाम। और उसके साथ साथ इकरा जी आप सुनना चाहती हैं नजमा, इफ़त, नाजिया, अमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए, और आजरा बहन आपके लिए भी। और उसके बाद इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा जनाब, इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब जल्दी में चलते हैं, गीत सुनते हैं। हुमा जी ने इस गीत की फरमाइश की, उनके नाम करते हैं और उसके साथ साथ आबिद भाई आपके नाम, आपके स्टाफ के नाम और गुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम और सभी सुनने वालों के नाम। प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: अरिजीत सिंह की प्यारी सी आवाज में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। हुमा जी ने इस गीत की फरमाइश की थी तो दोस्तों सबके लिए पेश किया। अब कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत जो मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी उस गीत को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
1: 24 hours a day.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने अनुज अपडवाल और कुमार सानू की आवाजों में दिल है के मानता नहीं फिल्म से लिया हुआ गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया। और दोस्तों, इसके साथ वक्त हमें बता रहा है कि अब कोई गीत नहीं होगा क्योंकि वक्त हो चुका है जनाब जोहर की अजान का। तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों मिलते हैं। ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, आप अभी जोहर की आजान सुन रहे थे और अब जनाब क्या है कि टाइम जो हो गया है वो कमर्शियल का हो गया है और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आ जाती है। और जैसा कि आपको प्रोग्राम के दौरान बताते हैं कि जनाब आप सनराइज रेडियो जो है ये लंदन में भी 2nd of September को लॉन्च होगा मिड डे 12 PM जनाब। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब सनराइज को लंदन भी आप दोस्त सुन सकेंगे। तो अपने जो दोस्त आपके अजीज़ रहते हैं अपने लंदन में, आप उन्हें बता सकते हैं कि अब सनराइज 2nd of September को 12 के बाद जनाब लॉन्च होगा, वहाँ भी आप सुन सकेंगे। तो इसके साथ ही अब चलेंगे जनाब, टाइम चेक करेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियाँ जो हैं वो बता रही हैं 1:44 यानी कि 44 past 1। तो अब कमर्शियल का टाइम हो गया है, तो कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा मुकेश की आवाज़ में। आबिद भाई आपके नाम, तारिक जुल्फी साहब, गुलाम भाई, महबूब इलाही, वाजिद भाई हडर्सफील्ड से, और हीरा खान साहब, और खान भाई, और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, महबूब इलाही साहब का नाम ले लिया, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले उनके नाम भी, और उसके बाद जनाब तीन शहजादे बाबर शाह पे काम करते हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके नाम भी, और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम भी करेंगे। तो अब चलेंगे कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत मुकेश की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के नाम होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more at Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना मुकेश की प्यारी सी आवाज में, और इस गाने ने हमें ये बताया कि जनाब वक्त ऐसे मोड़ पे हमें ले आया है जहां हम कहते होते हैं जनाब के हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पसीर हुआ जाता है। तो जनाब उस मोड़ पे आ गए हैं हम, और तीन घंटों का ये सफ़र इतना जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता कि तीन घंटे कैसे आपके साथ, क्योंकि आप दोस्तों का इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है कि आपके साथ तीन घंटों का सफ़र जो है वो आधे घंटे से भी कम लगता है। तो ये होता है ऐसा जनाब। तो बहुत शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का, सभी दोस्तों का जिन्होंने आज हमारे साथ शुरू से साथ निभाया और आखिर तक साथ निभाते रहे, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और उन दोस्तों का भी शुक्रिया जिन दोस्तों ने हमें प्रोग्राम में फ़ोन करके जनाब हमें बताया कि वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो उन सब का शुक्रिया। तो दोस्तों मुझे अब आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, Practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6pm to 8pm. And Sunday 13th September, 3pm to 5pm. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
11: सुनो, तुम्हें फिर प्यार होगा।
12: नहीं, मैं इसे नहीं भूल सकती।
11: मेरा हाथ थाम कर तो देखो, लगेगा ये भी पहला ही प्यार है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

0: जाएगी।
1: सनराइज रेडियो FM DAB ऑनलाइन एंड मोबाइल। सनराइज रेडियो Hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free child care courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: This is Sunrise Radio on FM, DAB, online and mobile.

0: station, Sunrise Radio.
1: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
0: We love Sunrise Radio.
2: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
5: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां वी कसीगियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
6: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी। नकन तीला है सिर्फ दो पौंडना। कान सलाने ना ही कपाउंड। छापा दे बंगानी कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 488 935।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: Plus, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
1: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
2: We're not having that, are we?
3: No.
4: Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
10: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
9: चाचा केड़ा चाचा
10: चाचा ज्वेलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
9: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
10: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935